0: वाय नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट को 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वाय नेट अब सबै कनेक्टेड।
1: नाक कान तथा घाटी रोग को उपचार सेवा अब सुवर्ण मेडिकल हल घोराही दांग में।
2: नाक कान तथा घाटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुवर्ण बुढामगर द्वारा प्रत्येक दिन बिरामी चेक जाँच भइरहेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। सम्बन्धित रोगका बिरामीले समयमै सम्पर्क गरी आफ्नो रोगको पूर्ण निदान गर्नुहोस्।
1: अन्य सेवाहरू
3: हाट जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर कृष्ण तिमिल सिन्हाद्वारा दैनिक बिरामी चेक जाँच भइरहेको जानकारी गराउँदछौ।
4: सुगर थाइराइड तथा हर्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर एसएन यादवद्वारा प्रत्येक महिनाको दोस्रो शुक्रबार बिरामी चेक जाँच भइरहेको जानकारी गराउँदछौ।
3: बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्दीप पोखरेलद्वारा दैनिक बिरामी चेक जाँच भइरहेको जानकारी गराउँदछौ।
5: प्रत्येक दिन डाक्टर नवराज केसीद्वारा बिरामीहरूको चेक जाँच तथा उपचार सेवा।
6: फोनबाट पनि नाम दर्ता गर्न सकिनेछ।
7: सम्पर्क सुवर्ण मेडिकल हल घोराही 14 आर्मी रोड। सम्पर्क फोन नम्बर 082-561-6994। सम्पर्क मोबाइल नम्बरहरू 98578-30145, 98478-30153 र 98649-41944।

बाय नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सोही इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सबै कनेक्टेड।

राम राम संजेक पांच बजे थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर में शालिक राम चौधरी हार्दिक स्वागत बा। निजी क्षेत्रको संचार माध्यम औ संचारकर्मी उप सरकारसे करलग विभेदकारी निर्णयको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखाको अगुवाईमा जिल्ला कसकको क्रियाशील पत्रकार रुकनक्से जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ अगाडि एक घण्टा धरना देलबाट नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको सर्कुलर अनुसार देशव्यापी आन्दोलन कार्यक्रम अन्तर्गत दाङमा फेरि धरना कार्यक्रम आयोजना गरिलक हो। पत्रकार रुकनक्से सरकारसे विज्ञापन औ सार्वजनिक सूचना उप नियन्त्रण कायम गर खोजलक गति उक्त निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता ओ स्वतन्त्रता संचार माध्यम उपरक हस्तक्षेप हुलक बटुवा रखल कनक्से संचार क्षेत्र न कमजोर बनिना ओ निजी मीडियाक अस्तित्व उपर्जु चुनौती सिर्जना गर्न निर्णय तत्काल सच्याइकला सरकारसे माग करलबाट धरना कार्यक्रममा पत्रकार महासंघको केन्द्रीय सचिव सबिन प्रियासन महासंघ दाङ अध्यक्ष सन्तोष सुवेदी पूर्व अध्यक्ष केएल बुढाथोकी लक्ष्मी आचार्य लगायतको सहभागिता रहल रह धरना कार्यक्रममा सहभागी पत्रकार कनक्से सरकार आफ्नो निर्णय पाछ निहटलस्ते ओ माग सम्बोधन निहुजसम्म आन्दोलनको कार्यक्रम हन निरन्तरता देना च्यौत्या आनै देरखल उस्तक प्रेस स्वतन्त्रता नागरिकको सुशिक्षितको हुना अधिकार ओ स्वतन्त्र पत्रकारिताको संरक्षणका लागि एकजुट होकन संघर्ष जारी धर्ना प्रतिबद्धता व्यक्त करलबाट यही बीचसम्म सरकारको स्वेच्छाकारी निर्णय विरूद्ध दाङमा संकलन करगिलक हस्ताक्षर सरकार हन पठागिल्बा दाङको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा पुन हन बुझागिलक हो। दाङ महिला जेसिसले जेसिस सप्ताह 2026 कार्यक्रम अन्तर्गत पाँचौं दिन आज बिहान घोराईमा कर्लक स्लो स्कूटी रेस प्रतियोगिता सम्पन्न हो रहल जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङ संघको सहकार्यमा आयोजना करगिलक उक्त कार्यक्रम घोराई 15 स्थित जिल्ला समन्वय समिति दाङको अगाडिको सड़कमा हुइल रह सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न उद्देश्य आयोजना करगिलक प्रतियोगितामा लक्ष्मी गैरे पहिलो अनिता ढकाल दोस्रो ओ शीतला मगर तेस्रो हुइल लही। दाङ महिला जेसिस अध्यक्ष अर्चना शर्माको अध्यक्षता तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक डाक्टर हेम बहादुर केसी ओ घोराई उपमहानगरपालिका 15 अध्यक्ष रमेश पाण्डे त्रिभुवन नगर जेसिसका अध्यक्ष मिनराज भाटसे विजेताहना पुरस्कार प्रदान गरल। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गतको सबको सेवा अस्थायी रूपमा बन्द हुइलबाट स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सफ्टवेयर प्रणाली परिमार्जन ओ स्तरोन्नति अपग्रेड गरपर्ना हुइल घोष्ते प्रतिष्ठानसे आज एक सूचना जारी गर्ती सेवा स्थगन करगिलक जनिलक हो। प्रतिष्ठान प्रशासनका अनुसार स्वास्थ्य बीमा बोर्डसे हालै जारी गरलक स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सुविधा थैली 63 संशोधन 2083 बमोजिमका लौ विवरण ओ संशोधित दर रेट माग दावी सम्बन्धी सफ्टवेयरमा अध्यावधिक करपर्ना हुइल घोर्से सेवा रोक पर्लक हो। अस्पतालसे अरू सूचना प्रकाशित निहुटसम्मकलाग बीमा अन्तर्गतको सेवा पूर्ण रूपमा बन्द रहना जना राखल सफ्टवेयर व्यवस्थापनका कारण सेवा ग्राहीमा पर गैलक असुविधाप्रति ध्यान देती अस्पतालसे प्राविधिक काम सम्पन्न हुएलसे सेवा पुनः सञ्चालन हुन जानकारी दिराखल अचानक सेवा बन्द हुइबेर अनियमित ओपीडी तथा अन्य उपचारका लागि ऐना बीमाका बेरम्याहु भरि प्रभावित हुइलबाट नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ओ भारतका बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय बीच प्राज्ञिक ज्ञान आदान प्रदानका लागि सम्झौता हो रहल संस्कृत विश्वविद्यालयका कुचल सचिव माधव अधिकारी सांस्कृतिक अध्ययन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक टीकाराम बुढा ओ बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयका संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकायका दिन राजाराम शुक्लासे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरबाट दुनौ विश्वविद्यालय बीच विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानका काम हुन सहयोग ओ सहकार्य गर्नका कारण दाङ बेलझुण्डेमा सम्झौता पत्र आदान प्रदान गरिलक हो। संस्कृत विश्वविद्यालयका उस्तक औ विभिन्न प्राज्ञिक काम हुन मिल्कन काम करती संस्कृत शिक्षाका प्रप्रदर्मा योगदान दिन देहकला सम्झौतासे सहयोग पुगिना संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति सुधन कुमार पौडेल बटुवा रखल संस्कृत विश्वविद्यालयसे यसै अगाडि फे भारतका विभिन्न विश्वविद्यालयसे सम्झौता कैकन अध्ययन अनुसन्धानमा सहकार्य कर्ती अहिलक संस्कृत विश्वविद्यालयका कुल सचिव अधिकारी बटुवा रखल यही सम्झौतासे दुई देशका विश्वविद्यालयमा अलग ज्ञानका भण्डार उपयोग गर सहज हुना बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयका दिन शुक्ला बटुवा रखल।
ओ घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर चारको वडा अध्यक्ष मुनाल घिमिरेसले पदमुक्त होरल उहाँ निर्वाचन आयोगसे पदमुक्त करलक हो। 2079 स्थायी तह निर्वाचनमा नेकपा एमालेसे वडा अध्यक्ष निर्वाचित होकन अघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश करल रह ओ कारण निर्वाचन आयोगसे उहाँ पदमुक्त करलक हो। आयोगसे आज गोर्खापत्र दैनिकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार ऊ जनप्रतिनिधि हुनक पद स्वत रित्त हुलक जानकारी दिलक हो। राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 का दफा 32 को उपदफा 1 ओ राजनैतिक दल सम्बन्धी नियमावली 2074 का नियम 22 बमोजिम दल त्याग करलक बेहोरा एमाले का केन्द्रीय सचिवालय से आयोग हुन बुझाइलक ओ अनुसारको सिफारिशमा आधारमा निर्वाचन आयोगका जेठ 26 गतेका निर्णय अनुसार घिमिरे लगायतका जनप्रतिनिधि हुनक पद स्वत रिक्त हुलक हो। रिक्त हुलक सक्कु पद स्थानीय तह निर्वाचन 2079 निर्वाचित वडा अध्यक्षको हुन्छ। भुइठा ताजुक थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह काल सन्ध्याफे थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर सुन सिक्ने भाटी अखसक खबरमा से समाचार कक्षक सबको संग्रहणसँग म शालिक राम चौधरी विदाहिटु रिरी मध्यपश्चिम ओनिटी रवि राम राम।

0: आवाज पश्चिम नेपाल को आवाज आवाज हिंद को आवाज यो हो रेडियो मध्य पश्चिम एफएम 91.4 MHz।
1: स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्वासिलो ठाउँ, कोई कसैलाई रोग लागे गोर्खा अस्पताल जाऊ। सर्जन, फिजिशियन, हाड़ जोड़ने, नसा, प्रसूति, रेडियोलॉजी, एनेस्थेसिया, बाल

0: मध्य पश्चिम ट्रांग चेक यति बेला बेलुकी को 7 बजे को छ।
1: ओखती साबुन को अर्को प्रस्तुति बहुगुणी ओखती आयुर्वेदिक तेल लामो अनुसंधान पछि आविष्कार भएको रुगा खोकी नाकबन्द जिउ दुखेको आदि सबैका लागि एकमात्र अचूक तेल जडीबुटी को शक्ति ओखती आयुर्वेदिक ते मात्र रु 50 मा।
2: गुराही को लागि आधिकारिक विक्रेता भुसाल स्टोर हस्पिटल रोड गुराही दान फोन नम्बर 082-585-210 थप सम्पर्क का लागि हिमालय स्टोर बाल मंदिर अगाड़ी निरज स्टोर सब्जी मंडी नजिक र प्रवेश श्रृंगार दूरसंचार देखि पश्चिम तर्फ।
3: सम्पूर्ण विशेषज्ञ सेवाहरू अब एउटै छानामुनि।
4: वरिष्ठ हार्ट जोन तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल यादव बुद्ध इन्टरनेशनल हस्पिटल प्रणाली घोराहीमा।
5: डाक्टर अनिल यादवद्वारा दिइने सेवाहरू
4: हात खुट्टा भाँचिएको, हात खुट्टा झमझमाउने, ढाड कम्मर दुख्ने, हार्ट जोनिक सम्बन्धी अपरेशन सेवा,
6: अन्य विशेषज्ञ सेवाहरू,
7: वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर अभ्यास पोखेलद्वारा बिरामी चेक जाँच सेवा,
8: वरिष्ठ सर्जन डाक्टर रमेश बस्नेतद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
9: नसा तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुबोध कुमार शर्माद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
10: वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर विमला तिवारीद्वारा चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
11: वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विज्ञान केसी द्वारा बिरामी को चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
12: वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डाक्टर अनिश आचार्य द्वारा भिडियो एक्सरे सेवा,
13: साथै इन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, इको, कल्पोस्कोपी, सिटीजी लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिका सेवाहरू।
14: सम्पर्क बुद्ध इन्टरनेशनल हस्पिटल प्राली सडक विभाग ओह्रालो घोराई दाङ फोन नम्बर 082-585-218।